कर कई शहरों में सड़कों पर निकलने वाले तलबा और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। फ्रांसीसी हुकाम ने बताया कि मंगल के रोज़ होने वाले मुजाहरों में 48 सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ कम से कम 10 असातजा और मुतादद तलबा जख्मी हुए। यह एहतजाज सरकारी मुलाजमीन और असातजा की कम उजरतों को और काम के नामुनासिब हालात के खिलाफ की जाने वाली एक वसी हड़ताल के दिन ही सामने आए हैं। फ्रांसीसी वजीर आजम सेबेस्टियन लेकोर्नो ने मुजाहरों में शिद्दत लाने को गैर जिम्मेदाराना करार दिया, जबकि वजीर दाखिला लॉरिन नुनेज ने पुलिस की कार्रवाई का दिफा करते हुए इसे मुतनासिब करार दिया। दूसरी तरफ तलबा के नुमाइंदों ने हुकूमत पर पुलिस के जरिए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। और इसराइली रोजनामा वाई नेट के मुताबिक दुबई से तल अबीब जाने वाले एक मुसाफिर तैयारे के पायलटों के दरमियान मुबैना लड़ाई के बायस हाई जैकिंग का कोड मुतहरिक हो गया, जिसके बाद बुध के रोज़ तैयारे ने सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग की। वायनाइट ने बताया कि तैयारे को बिन गुरियान एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस परवाज में 174 मुसाफिर सवार थे और उसने कुछ देर के लिए खतरे का सिग्नल भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट में होने वाली तकरार और झड़प के दौरान मुमकिन हाई जैकिंग की निशानदही करने वाला कोड फाल हो गया था। इसके बाद तैयारे ने सऊदी अरब के तबूक हवाई अड्डा

0: ने अपना रुख बदला, सऊदी फिजाई हदूद में वापस आया और ममलिकत के ऊपर कम बुलंदी पर परवाज करने लगा। इब्तदा में जुनूब की तरफ बढ़ने के बाद तैयारा सऊदी फिजाई हदूद के अंदर रहते हुए मगरब की तरफ मुड़ा और फिर ममलिकत में लैंड कर गया। इसराइल चैनल 12 ने बाद में कहा कि ऐसा लगता है कि यह वाकया सलामती से मुतालिक नहीं था और हुकाम इस बात की जाँच कर रहे हैं कि आया पायलट और को पायलट के दरमियान बहस की वजह से खतरे का सिग्नल नादानिस्ता तौर पर मुतहरिक तो नहीं हो गया था। ब्रॉडकास्ट ने बताया कि फ्लाइट अमला एक रूसी पायलट और एक यूक्रेनी को पायलट पर मुश्तमिल था।
1: तुर्की के रवान साल के पहले 8 महीनों के सियाती आदाद शुमार का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की सकाफत और सियाहत की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी था अगस्त के अरसे में तुर्की का दौरे करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 3,48,26,000 से तजावज कर गई है। कुल जायरीन की तादाद 5,15,00,000 के करीब पहुंच गई है। साल के 8 माह के अरसे में तुर्की में सबसे ज्यादा सयाह भेजने वाला मुल्क 47,17,000 अफराद के साथ एक बार फिर रूस रहा। रूस के बाद 43,91,000 सयाहों के साथ जर्मनी और 27,00,000 के साथ ब्रिटानिया दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। 8 महीनों के मजमू आदाद शुमार में 1,25,00,000 से जायद सयाहों की मेजबानी करते हुए इस्तांबुल पहले नंबर पर रहा। सिर्फ अगस्त के महीने के जायजा लिया जाए तो 25,00,000 गैर मुल्की जायरीन के साथ अंताल्या सरफहरिस्त रहा। इसके साथ ही सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुए।
0: तो लीजिए सामीन, अब फुंदा अरार की आवाज में एक तुर्की नगमा समाप्त।

तसव्वुर करें कि एक इंसान रात के घुप अंधेरे में बाहर निकलता है। उसके हाथ में कोई नक्शा नहीं है, कोई कुतुब नुमा नहीं है। वो मस्नूई सियारे जो आज दुनिया को हमारी उंगलियों की नोक पर ले आए हैं, अभी तक ईजाद नहीं हुए थे। लेकिन जब वो अपना सर ऊपर उठाता है तो वहाँ मौजूद होते हैं सैकड़ों हजारों रोशनी के नक़ात। इस लम्हे इंसान ने अपने आप से जो पहला सवाल पूछा वो ये था कि मैं कहाँ हूँ। मौजूद सामीन, इंसानियत ने आसमां को सिर्फ हैरत और तारीफ से नहीं देखा, उसने उसे पढ़ना एक जबान की तरह समझना सीखा। क्योंकि बाज़ औक़ात आसमान ज़मीन का सबसे बेहतरीन और बेऐब नक्शा होता था। क़ुरून वुस्ता में जब यरूशलम का नाम लिया जाता है तो आमतौर पर ज़हन में शहर की फसीलें, इबादतगाहें और मुक़दस मकामात आते हैं। लेकिन इस शहर का एक और कम मालूम मगर बहुत गहरा साइंसी पहलू भी था। अल-क़ुद्स एक ऐसा रियाजियाती मरकज़ था जहाँ कायनात का इंच इंच नापा और हिसाब लगाया जाता था। अब हम आपको अल-क़ुद्स की तंग गलियों से होते हुए मस्जिद अक्सा जाने वाली शाहरा बाबुल सिलसिला पर वाक़ तारीखी खालिदिया कुतुब खाने ले जाना चाहते हैं। 1900 में कायम होने वाली और फ़िलिस्तीन में निजी तौर पर खोली जाने वाली यह पहली अरब पब्लिक लाइब्रेरी तकरीबन 1200 नादिर कलमी नुस्खों की मेज़बान है। मस्जिद अक्सा लाइब्रेरी और खालिदिया जैसी दर्सगाहों और मराकज़ में महफूज इन मखतूतात में इल्म फलकियात और इल्म मीकात के शोबे में लिखी गई इंतहाई कीमती तसानीफ़ शामिल हैं। इस विरासत की सबसे वाज़े और ठोस मिसालों में से एक 14वीं सदी के माहिर फलकियात ज़ैनुद्दीन अल-कुरकी से मंसूब है। अल-कुरकी ने ख़ास तौर पर अल-क़ुद्स के अर्ज़ बलद के मुताबिक खसूसी फलकियाती हिसाब किताब के जदूल तैयार किए थे। ये जदूल हमें यह दिखाते हैं, क़ुद्स सिर्फ एक ऐसा शहर नहीं था जिसे मुक़द्दस माना जाता था, बल्कि एक ऐसा शहर भी था जिसका अर्ज़ बलद नापा गया और आसमां में उसके मकाम का रियाजियाती तायुन किया गया। क्योंकि अगरचे हम सब एक ही आसमां के नीचे रहते हैं, लेकिन उफक पर किसी सितारे का जाविया शहर के लिहाज से बदल जाता है जहां आप खड़े होते हैं। अल-क़ुद्स के लिए एक अलग हिसाब किताब की जरूरत थी। ठीक उसी मोड़ पर हमारा सामना अल-क़ुद्स की फलकियाती तारीख के सबसे हैरान कुन सच से होता है। जब फलकियात का लफ्ज़ बोला जाए तो हो सकता है कि आपके जहन में ऊंचे गुंबदों वाली देव हैकल इमारतें और शानदार रसदगाहें उभरने लगें। लेकिन अल-क़ुद्स में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। अगर आप अल-क़ुद्स में पत्थरों से बनी किसी बहुत बड़ी रसदगाह की इमारत तलाश कर रहे हैं तो आप गलत जगह देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास मौजूद तारीखी दस्तावेजात ये जाहिर करती हैं कि क़ुरून वुस्ता के दौरान अल-क़ुद्स में रसदगाह की कोई बड़ी इमारत तामीर नहीं की गई थी। तो फिर इतने दकीक और हसास फलकियाती हिसाब किताब कहाँ किए जाते थे? जवाब असल में बहुत सादा है। अल-क़ुद्स की रसदगाह इमारतों से नहीं बल्कि खुद स्कॉलर्स और उलमा के वजूद से बनी थी। घरों की छतों से किए जाने वाले मुशाहिदात, कलमी नुस्खे, मुकीत खानों में रखे जाने वाले रिकॉर्ड और वो इल्म जो इन दानिश्वरों ने अपने जहनों में महफूज कर रखा था, शायद फ़िलिस्तीनी साइंसी तारीख का सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज पहलू यही है। कुछ साइंसी मराकज़ की सबसे अहम इमारत वो होती है जो कभी तामीर ही नहीं की गई। उनकी सबसे बड़ी इमारत खुद इल्म है। आसमां के साथ फिलिस्तीन का यह गहरा ताल्लुक सिर्फ माजी तक महदूद नहीं रहा। यह कहानी आज के दौर में एक ज़बरदस्त साइंसी मुज़ाहिमत के साथ जारी है। साल 2012 में गजा में बैनुल अक़वामी सतह का एक बहुत ही ख़ास कदम उठाया गया। गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, अल अक्सा यूनिवर्सिटी और अल अजहर यूनिवर्सिटी पर मुश्तमिल एक तालीमी नेटवर्क के तहत यूनेस्को चेयर इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स एंड स्पेस साइंसेस कायम की गई। इस शोबे की सदारत मारूफ माहिर फलकियात डॉक्टर सुलेमान बरका के सुपुर्द की गई।
زمین پر جن کے نقل و حرکت کے راستے محدود کر دیے گئے تھے، ان فلسطینی سائنسدانوں نے کائنات کی لامتناہی وسعتوں پر نظریں جمائیں اور غزہ میں فلکیاتی تعلیم اور تحقیق کو زندہ رکھا۔ اس سائنسی عزم اور پختگی نے فلسطین کا نام آسمان تک پہنچایا اور اسے ستاروں کے سرکاری نقشوں پر درج کروا دیا۔ 2019 میں انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین نے نیم ایکسو ورلڈز مہم کے تحت دنیا سے تقریباً 1200 نوری سال دور ایک نظام شمسی کو نام دینے کا حق فلسطین کو دیا۔ فلسطینیوں کی ووٹنگ سے تصدیق شدہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق HAT-P-23 کوڈ والے ستارے کو القدس کی تاریخی پہاڑیوں کے حوالے سے موریا کا نام دیا گیا، اور اس ستارے کے گرد گھومنے والے سیارے HAT-P-23B کو القدس کے اولین بانیوں یعنی کنعانی قبیلے سے منسوب کر کے جبیس کا نام دیا گیا۔ آج انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین کے سرکاری ڈیٹا بیس میں وہ نظام موریا اور جبس کے نام سے درج ہے، ایک ایسی یادداشت اور تاریخ جس کی سرحدوں کو زمین پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آسمان پر 1200 نوری سال دور اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین کی سائنسی تاریخ کی یہ صفحات صرف کتابوں کے شلفوں میں بند نظریات نہیں تھے، ان کا استعمال قبلے کی سمت معلوم کرنے، صحرا میں راستے تلاش کرنے اور سب سے بڑھ کر کائنات میں اپنے وجود کا اعلان کرنے کے لیے کیا گیا۔ آسمان زمین پر فلسطین کی یادداشت اور شناخت بن گیا۔ اب شہر آسمان میں محض ایک مقام اور نقشے پر ایک نقطہ بن چکے ہیں۔ اب وقت ہے ان لوگوں کے بارے میں بات